0: पर 80 दशक जमीश मेरम चूदन दी द गाय बिबल बुगाद सुई टू ब्रो ब्रेस्ट
1: कम ओवर हियर एंड लेट मी गिव यू अ टंग किस ऑन योर हॉट पॉट.